0: बस बस बस बस सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: है ये सोच के चुनो।
1: भाई क्या बात है,
0: जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, क्या समझे, तो जब जाएगा

के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं। तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोबान चल रहा है।

गिरा करते हैं। झरने पकते हैं तो झुमकों की तरह बोलने लगते हैं कोहिस्तानों पर। बेलें गिरती हैं छतों से, मौसमी पेड़ है मौसम में उगा करता है।

0: वाढवायचंय, पण मोठी रक्कम कुठून आणू?
1: विश्वास बँकेचे डेली कलेक्शन व्यवसाय कर्ज घ्या.
0: हप्ता कसा भरायचा?
1: अगदी सोपे. रुपये 1,00,000 कर्जासाठी फक्त रुपये 108 रोज.
0: रुपये 5,00,000 असुरक्षित कर्ज, मुदत 3 वर्ष. भाजी विक्रेते, फेरीवाले, छोटे दुकानदार आणि रोजच्या रोकड व्यवहाराचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी खास योजना. अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला.
2: रातभर सर्द हवा चलती रही, रातभर हमने अलाव तापा. मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े. मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले. अपनी इन आँखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी. तुमने भी पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी. रात भर सर्द

मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नजमें, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी इन आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें

फुदक फुदक के फुदक फुदक के नाचल गोरी, पैरों में आएगी मोच हो तेरे पैरों में आएगी मोच।

0: आज उस पार्टी में कत्लेआम हो जाएगा, ऐसी लग रही हो।
1: कुछ घबराहट से हो रही है।
0: वजह क्या है?

0: थक गई चलते चलते।
1: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो मन हारो धन दौलत हारो खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
0: बैजू, चरिंदे जागे परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
1: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो।
2: अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना
1: मुस्कुराना, एक ग्रास एम्पल आपने थोड़ा सा।
2: अरे

आजम जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हिट हिट हिट की आए रे तबियत हिट की जाए। टेड़ा का टेड़ा का टेड़ा कदा, टेड़ा का टेड़ा का टेड़ा कदा, टेड़ा का टेड़ा टेड़ा टेड़ा।

जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हिट हिट हिट की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए। डेरा का डेरा का डोर डोर, डेरा का डेरा का डोर डोर, डेरा का डेरा का डोर।

0: व्यवसाय वाढवायचाय? विश्वास बँकेचे डेली कलेक्शन व्यवसाय कर्ज, रुपये 5 लाखांपर्यंत असुरक्षित कर्ज आणि रुपये 25 लाखांपर्यंत तारणासह कर्ज सुविधा. रोज थोडा हप्ता भरा आणि व्यवसायाला द्या मोठी झेप. अधिक माहितीसाठी संपर्क प्रेमचंद तायडे 9604179861 किंवा गणेश सोमवंशी 8380016508. मोठा व्यवसाय विश्वास बँकेच्या साथीने.
1: अचानक पैशांची गरज आहे पण एफडी मोडायची नाही,
0: मग काळजी कशाची? विश्वास बँकेचं गोल्ड लोन घ्या.
1: काय सुविधा आहेत?
0: फक्त 9% व्याजदर, रुपये 50 लाखांपर्यंत कर्ज आणि गरजेनुसार ओडी अर्थात ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी अगेन्स्ट गोल्ड लोन.
1: वा, म्हणजे सोनं सुरक्षित आणि पैसा उपलब्ध.
0: विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक. अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला अवश्य भेट द्या किंवा कॉल करा 9130002088. विश्वास बँक, प्रत्येक गरजेला तत्पर.
2: चलो घर चलो, बारिश होने वाली.
3: तो क्या होगा, दिल के अंदर इतनी आग भड़क रही है कि ये बारिश तो क्या, आसमान भी फट पड़े तो भी बुझा नहीं सकता.
2: सुमति, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ.
3: कोई जरूरत नहीं, अब मेरे दिल की आग आपके खुफिया शब्दों की रेत ठंडा नहीं कर सकती. दोष मेरा था जो गरीबी के पुल को पार करके अमीरी के किनारे तक पहुंचना चाहती थी. मैं नादान थी, मगर आपने इशारा कर दिया होता कि ये कोशिश मत करो, इस कोशिश का अंजाम मौत है, बर्बादी है.
2: सुमति, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़काओ.
3: छोड़ दीजिए, मुझे छूकर कहीं आपके हाथ मैले ना हो जाए.
2: क्या कह रही हो तुम? तुम्हें छोड़ने से पहले दुनिया ना छोड़ दूंगा.
3: अरुण बाबू, आज तक गरीबों की मोहब्बत दीवारों ही में चुनवाई गई है. आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा दिल है और वो भी टूट चुके हैं.
4: सुमति, कुछ तो ख्याल करो. इतनी रात गई है, तमाशा किसी ने देख लिया तो रही से इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी. जाओ घर जाओ. डॉक्टर साहब, आप बड़े लोग हैं लेकिन एक तरह से मैं आपकी माँ की बराबर हूँ. इज्जत में न सही, उम्र में तो हूँ. आप अगर किसी गरीब का भला चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुमति को भूल जाएं और सुमति आप अपने प्यार के लिए माँ से प्यार से कुर्बानी दीजिए. बच्चों की शादी ब्याह पर माँ बाप का अधिकार होता है. जाइए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए. अरुण, बारिश हो रही है, भीग जाओगे. माफ करना, नाम ले लीजिए. डॉक्टर साहब ठहरिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ.
2: जी नहीं, मेरी माँ ने मेरे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि ये बारिश तो क्या बड़े बड़े तूफानों को भी सह सकता है.